महाराज तो कैसा लगा आपको गाना? मैं शिव का हूँ सिव मेरे, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा एंड आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय शंकर, जय महाराज, टेक केयर।

0: मैनेजर साहब, मुझे मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: जब तक तुम्हारा 2 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तुम्हें अपना पासपोर्ट मिलेगा और ना तुम अपने देश जा सकते हो।
0: किस बात का एग्रीमेंट? एग्रीमेंट में तो ये भी लिखा था मुझे हर महीने मेरी सैलरी मिलेगी, नहीं मिली 8 महीनों से, और अब चाहिए भी नहीं मेरे को। मेरे को मेरा पासपोर्ट चाहिए, मुझे मेरे घर जाना है।
1: तुझे एक बार कहा समझ नहीं आता, जब तक तेरा 2 साल का एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाता, ना तू अपने घर जाएगा और ना अपने देश। अब निकल यहाँ से, चुपचाप काम कर अपना।
0: घर नहीं जा सकता? हे बाबा श्याम, अब तू ही धनी है।
1: तुम्हारा बाबा श्याम धनी है यहाँ से 7 समुद्र पार। यहाँ पे तुम्हारा धनी वही है जिसने तुम्हें वीजा दिया और जिसके पास तुम्हारा पासपोर्ट है।

सुना है लोगों से खाटू वाले श्याम जी बुरी से बुरी मुसीबत से भी निकाल सकते हैं। आ रहा हूँ मैं भी बाबा, अब आप ही हैं जो मुझे संभाल सकते हैं।

0: अरे सर, हर गाने का रिमिक्स कर देते हैं सर। सर, हमारी जनरेशन को ये सब समझ नहीं आता, नहीं आ रहेगा कुछ बोलो यार, छोड़ो यार सर मेरे को।
1: गाने का इक्वल वैल्यू है।
0: अरे कोई कॉल नहीं करेगा भैया गाना।
2: अगर तू समझ नहीं रहा है ये हिट गाना है, तेरे को नहीं करना, तू मत कर, मैं जा रहा हूँ।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।

की पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर

Thank you.

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहां बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे
5: रेडियो डीएस
6: 89.6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
6: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6
2: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
5: बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे
5: रेडियो डीएस
6: 6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन,
2: गंगापुर की माटी।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: हिट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6,
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन,
0: हिट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर,
1: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डी।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
2: गुड मॉर्निंग सुप्रभातम नमस्कार सत श्री अकाल गंगापुर सिटी में आपका रेडियो दोस्त रेसमीना दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश आप हमें इस वक्त कॉल कर सकते हैं हमारे स्टूडियो की लाइन चालू है और सुन सकते हैं आप अपनी आवाज़ के साथ अपने पसंद के गाने

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन
2: बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम तिलु खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है नागिन और गाने की बोल है तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अरे सचिन प्रजापत बोल रहे हैं।
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: रामधन गुजर के रसिया।
1: वो कैसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर गाना? हेलो
0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अतर सिंह गुजर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: नीरज में अब दिल में बसे।
1: पर ये गाने नहीं चलते, इसको मत दिया करो बार बार।
0: क्यों
1: नहीं, ये नहीं चलते।
2: फिल्मी गाने बताया करो सर।
0: ठीक है, तम्बल के डाकू चला दो।
1: सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: सुनिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन

0: पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो DS 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो DS 89.6। आपकी पसंद, आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजे या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो DS 89.6, गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज।
1: नमस्ते, तो नाम क्या है आपका?
2: कौन
1: सा गाना सुनना चाहूँगी?
2: सर गाने को बोले थोड़ी मजाना देगी, कंगन मजाना देगी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: ओके, थैंक यू।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
3: 89.6 पे
0: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए
4: हेलो
5: हाँ जी नाम क्या है आपका कहाँ से बात कर रहे
4: हो
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगे
4: मैम फिल्म से
5: कौन सा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए गाना

0: दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4:00 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृष्य मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर से।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: का सरताज है।
1: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828995000। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
2: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: इस वक्त आप ट्यून कर रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। और दोस्तों अपना रेडियो सेट छोड़कर ना जाइए, आपके साथ आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना जल्द करेंगे आप सभी की फरमाइशों को पूरा। बने रहे हमारे साथ रेडियो डीएस पर। फिलहाल आप कार्यक्रम सुन रहे हैं लू फरमाइश
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धरती पर रेडियो डीएस।

0: आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृषि मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
3: हेलो
4: हेलो, गुड मॉर्निंग मैम।
3: गुड मॉर्निंग, नाम क्या है आपका?
4: निशा, गंगापुर सिटी से।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? हेलो,
4: अदा तेरी खूबसूरत।
3: कौन सा मैम?
4: हिमाना, अदा तुम्हारी खूबसूरत।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा मैम।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: नया मैजिक रेडियो DS 89
2: हीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
3: हेलो मैम नमस्ते
4: नमस्ते सर नाम क्या है आपका
3: मैं यशवंत पटेल
4: कहाँ से बात कर रहे हो
3: सागर जिला मध्य प्रदेश
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर
3: मेरा दिल देश दिल पे फिदा
4: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
3: थैंक यू मैम
4: यू वेलकम

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो DS।
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:47 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों कार्यक्रम की अगली फरमाइश हमारे पास आई है मोनिका मीणा जी की। मोनिका मीणा जी ने हमें कॉल किया है सवाई माधेपुर से। सुनते इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे
3: रेडियो डीएस
5: 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
5: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या आपका?
1: रफी कहाँ लोग मजी के पीछे से?
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: तेरे बंजारा नस्ता देखे।
2: कौन सा सर?
1: तेरे बंजारा नस्ता
2: देखे। ओके सर, सुना रहे हैं।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे। हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
2: वीरेंद्र।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: सुंदापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: हम जैसे जी रहे को जी के तो
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। हेलो,

0: आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हर्ष मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6। आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। हम आमंत्रित करते हैं अच्छे विचारक जो अपनी प्रस्तुति का प्रसारण करना चाहते हैं। सभी कलाकारों से किसी भी विषय वस्तु पर जो सामाजिक हितकारी हो, हमारे स्टूडियो के नंबर पर हमारे व्हाट्सएप पर संदेश भेजें या कॉल कर जानकारी प्राप्त करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मुस्कुराते रहे, आनंद के साथ सुनते रहे रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज।
1: जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी जी।
2: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: और मैंने जखनी फिल्म का सातो गाना जी, जलता है दिया मेरा दी की बेटी रातों में।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ना रेडियो डीएस।
1: और मैंने पहले सुनाई आपकी शेर चीज है ना आप?
2: क्या सर?
1: मैं शेर चीज है ना आपको?
2: हाँ सर, मैं तो ठीक हूँ। अब तो
1: चलो शुक्र है भगवान का ही। मैडम हमें सभी अनाउंसरों की चिंता रहती है, जब कोई अनाउंसर नहीं आता है तो हमें
2: हाँ, तो मौसम ऐसा ही हो रहा है ना, मौसम की वजह से बीमारी सबके हो रही है।
1: हाँ वो तो है, जम्मू में तो आज बहुत बारिश हुई सुबह सुबह ही।
2: नहीं यहाँ पर 3 से ही चल रही है सर बारिश का, तो मौसम बहुत ज्यादा हो रहा है।
1: ठीक है मैडम,
2: ठीक है।
1: ओके मैडम, थैंक यू।
2: ओके, थैंक यू, वेलकम सर।
1: ओके।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: हाँ जी, योगेश जांगले बोल रहे हैं छत्तीसगढ़ से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फूल और कांटे से कोई भी गीत सुना दें।
1: तो तुम्हारे वहाँ की फरमाइश करेगा।

0: आपका
1: गजरात कौन पुराने देर ना हो जाए
0: देर ना हो जाए
1: जी
0: ओके सर हेलो

0: 89.6 शहर की धुन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
2: 89.6 पे
1: रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6

0: उत्पादन का सरताज है।
1: हेलो,
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम प्रियंशी पटेल है।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: भोपाल मध्य प्रदेश।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: कौन दिशा?
2: ओके,
1: कौन दिशा?
2: हेलो,
1: कौन दिशा लेके चलो रे बटोरिया।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
2: यू वेलकम।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आदर पटेल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: तो
0: गाना सुनना चाहोगी? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा ना रेडी डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू मैम।
0: जी वेलकम।

0: हेलो। हाँ
1: हेलो, राजघवन
0: जी, नाम क्या है आपका? कहाँ
1: गंगापुर
0: से बात कर रहे हो?
1: सिटी,
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: दुख
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: है, जल्दी चला दे।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम नंदिनी पटेल है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: कटारा हिल्स भोपाल।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: रतन धन का है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैम।

0: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
1: अनिल गुर्जर।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर चीटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैम सिद्धू मूसे वाला कोई सा गाना चला
0: सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना?

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम कृष्णा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: तू कौन से गानों की छोरी?
0: मैम सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा।

0: फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे। इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनना और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने हृष्य मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी।
3: खुशबू रिश्तों की मिठास, गंगापुर सिटी है दिल के पास। गलियों में यादें, चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खास। किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी। मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की दुनिया।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: गोलू मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: गाँव गोरी तेरा गाँव सुहाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: कुलदीप मीना।
1: कहाँ से बात करूँ?
0: करौली से।
1: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
0: चंबल घाट।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश करी।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अरुण।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बरसात है।
0: वो किसे सुना रहे हैं आपकी फरमाइश? परिगाना

0: नमस्ते कमलजीत चौधरी, आज कर रहा हूँ आगे।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है दीदी प्यार का धोखा तेरा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ठीक,
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मोहम्मद अली हसन बोल रहे हैं, सुपौल बिहार से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैडम जी सफर फिल्म का गाना सुनना दीजिए, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार ना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।
1: वेलकम सर।

0: नाम क्या है आपका?
1: दिव्या गुजर।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: आँख है भरी भरी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
0: हैं?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: सैयारा का तुम सॉन्ग।
1: वो कैसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश?

0: हेलो हेलो। हाँ जी मैम, क्या है आपका मैम? क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे
1: हो?
0: कौन से गाना सुनना चाहोगे?
1: इंडियन सॉन्ग ही लगाते हैं आप लोग सर?
0: हाँ जी बताइए।
1: ये सही
0: है, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिए।

0: DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
3: पॉपुलर।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे। हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
4: AI powered personal music teacher from Saregama।

0: पूजा,
1: कहाँ से बात कर रहे
0: हो? अल्लाह पर खेती नहीं किया,
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा एंड किसे किनारे गाड़ी में किसे किनारे टाइम
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिदा।
0: हेलो,
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ततक दर्शी मासूम शर्मा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिदा।

0: है आपका?
1: दिव्यांशुना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नशा कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: जी गाने।
0: दीवाने?
1: हाँ जी गाने, जी गाने,
0: जी गाने।
1: हाँ
0: वो किसा सुना रहे हैं आपकी सर में?

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रही
1: हूँ? गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: डूब मचाले।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परी गाना

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कन्ना।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगा पर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: दुपट्टे वो संभाल गोरी।
0: ओ किस नाम सुना रहे हैं आपकी सभा करेगा?

0: 6 पे रेडियो डीएस।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: रोहित लोधवाल।
1: कहाँ से बात कर रहे सर?
2: सिंगापुर।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा सर?
2: क्रिश राव का नया

0: आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आप
1: रेडियो डीएस 89.6

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हेलो फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो DS 89.6 पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है 1:00 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरसी पल। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी। मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया। खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या तुम भी मेरे लिए पागल थी।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे च...

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट पे है शहर का कमाल, DS89.6 शहर के
2: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 2:00 के। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी यादें 89.6 रेडियो पर।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: 6 रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: DS.
1: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS. 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर. सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6.

उस सिटी की अपनी आवाजें, माटी से जुड़े कहानी सुने मुन्नानी स्टेशनों के घुमाने और सुनते रहे रेडियो DS 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का सवाई माधोपुर का दलित कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से दिल तक निराली अपनी भाषा में धन्यवाद।

0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: ईट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6
0: दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। दोस्त अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दिन तूते तेरा परिवार शायद छड़ के चल गया।
1: तो कुछ साल बाद मैं तेनू एक हाथ ले गया ते उसने रोज पढ़ती गई
0: पढ़ता सी तो एक दिन
1: हर रोज हर सवेर तू मेरी वेट कर ते मैंने वेख वेख तेरी छोटी जी स्माइल च सब कुछ पता लग जाए।
0: तो पता भी नहीं सी कि इन्नी छोटी जी उम्र च इतना प्यार हो सकता।
1: मैंने पता सी तू आएगा ते मैं तेनू दस सकां कि मैं तेनू कितना प्यार करती।

0: हाँ जी, किवें लग्या तुहानूं इह गाणा? लाइक ते कमेंट करके जरूर दस्यो ते मेरे डेब्यू ट्रैक विदाउट यू नूं जरूर सुनो।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।

0: देश की गरीबी का कारण गरीब नहीं उनसे लूटने वाले बेईमान अमीर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग
4: 89.6 पे
3: रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
3: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का, थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम राजस्थान 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।

0: रेडियो डीएस, दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस,
2: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6,
0: दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का और दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश और आपकी रेडियो दोस्त अर्जे पलर। सर कौन सा गाना?
4: ये नमस्ते सर।
3: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
4: धंडेराम गुजर बोल रहा हूँ गांव बदरका से।
3: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: गारे के बोल है ओ यारा कैसी है तेरी बेवफाई।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हाजी नमस्कार।
1: क्या नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: हम सादर है दशहरा मैदान से बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना तो आज आपने जो है गाने सुनाए ना, बहुत बेहतरीन गाने सुना दिए आज तो।
1: जी सर धन्यवाद।
0: और जो प्रोग्राम का जो नाम है उसको आज सार्थक कर दिया आपने।
1: हाँ जी सर।
0: हाँ, और विषय भी अच्छा था आज का, और उसमें एक गाना रह गया जो मैं अपने पसंद, मेरे पसंद पे सुना दीजिए उसको।
1: कौन सा है सर बताना?
0: गाना है मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम।
1: कौन सा सर, दोबारा बोलना एक बार।
0: मुझे तुम याद करना और मुझको याद आना तुम।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश। करिएगा ना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद। नमस्कार।

0: हेलो
1: हेलो बहन जी, नमस्कार जी।
0: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
1: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलू खेड़ा से।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: फिल्म का नाम है गोपी और वो भजन है धार्मिक, सुख के सब साथी दुख में न कोई।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करेगा ना रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मेरी बहन।
0: यू वेलकम।

0: हरी जी दादा नमस्कार।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: जी मैं शारदा प्रसाद प्रजापति गोल्डन रोड मथुरा से।
1: जी सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद आपको भी, मंगलमय हो आपका दिन।

0: हेलो नमस्ते सर जी।
1: सर नमस्ते, सर नाम क्या है आपका?
0: चौधरी अर्ज कर रहे हैं महावीर जी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: गाना है घटा छा गई
1: सही है
0: जी जी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिए गाना।
0: थैंक
1: यू, वेलकम।

0: गुलशन
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: जन्नापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मेरा कंगना झांझर छोड़ी खनकन करती है।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हेलो
3: हेलो
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
3: आरबी भूजल।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: स्टूडियो के नंबर।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: बुलेट पे तुम्हारे केड़िया।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: दिल से दिल तक 89.6

0: हेलो। हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: सजन राजी हो।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: हिमांशु मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: हमारी अधूरी कहानी।
1: ओके सर, सुना रहे आपकी फरमाइश। पर ये गाना

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता

0: हेलो फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो
1: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का। जय जय अपनी मिट्टी अपनी कहानी गंगापुर की बात निराली।

पसंदीदा गीत, आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 1 तक।

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो। भाई बहना, माता बुजुर्गों,

सपनों के संग हर दिन खा सक, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया, खेती की खुशबू, शहर की रौनक, अपनों की बातें, दिल की धड़कन, हंसी खुशी और प्यार की बोली।

गंगापुर सिटी है दिल के पास, गलियों में यादें, चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खास, किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया, इस माटी ने उसको गले लगाया।

सुनो सुनो गंगापुर वासियों, बात हमारी ध्यान से सुनियो। चुनाव का आया है मौसम, अपना वोट समझदारी से चुनियो।

0: फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए 6378024475। एक बार फिर सुन लीजिए 6378024475। इस शानदार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। आपके अपने ऋषि मीणा और पलक शर्मा के साथ सुनते रहिए रेडियो डीएस 89.6, आपकी पसंद आपकी आवाज और आपका अपना रेडियो, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन
1: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

फरमाइश, आपकी पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सुबह 9:30 से 10:30 के बीच हमें कॉल करें। हेलो फरमाइश। कार्यक्रम का समय प्रतिदिन सुबह 10 से दोपहर 1 तक है, और अगर सुबह कॉल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हम शाम को भी आपकी फरमाइश लेकर हाजिर हैं। शाम 4 से 4:30 तक आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फरमाइश, अपना संदेश और अपने पसंदीदा गीत की जानकारी दे सकते हैं। शाम 4:30 से लगातार शाम 6 तक हम आपके साथ रहेंगे, इसलिए आप रोज रेडियो डीएस 89.6 सुनिए और हमें कॉल करना बिल्कुल न भूलें। हमारे स्टूडियो का कॉन्टैक्ट नंबर याद रखिए,

गंगापुर सिटी है दिल के पास, गलियों में यादें, चौपाल की बात, अपनों के संग हर दिन खास। किससे पुराने यादें सुहानी, हर चेहरे में एक नई कहानी, मेहनत से जिसने नाम बनाया इस

0: गुड इवनिंग दोस्तों, इस वक्त आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसे मिला। दोस्तों संध्या के 7 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।
1: साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई।

बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा। तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पांव पर खड़ी मृगली हरिसु हेत लगाए, और हरी रो सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

मांगने वाले खाली न लौटे। कितनी मिली खैरात न पूछो, अरे उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, उनकी कृपा की बात न पूछो।

श्रीमन नित्य निकुंज विहारिणे नमः। श्री बिहारी बिहारिणी जो जयति, श्री स्वामी हरिदासो विजयते तराम। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामाजू श्री राधा रानी है। जो ब्रजमंडल 84 कोस में फैला हुआ है, जिसमें कि श्री राधा रानी का हृदय स्वरूप हमारा श्रीधाम वृंदावन है, तो आइए मेरे साथ मिलकर युगल छवि का ध्यान करते हुए और श्री राधा नाम का आश्रय लेकर ब्रजमंडल के प्रमुख स्थानों का नाम लेते हुए श्रीधाम वृंदावन से अपनी यात्रा को प्रारंभ करिए। और मेरा विश्वास है कि इस मानसिक ब्रज यात्रा से आपको वास्तविक ब्रज की यात्रा करने का ही फल मिलेगा।

किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं। ला क्या छाती का कह देना आई लव यू छोरे तेरे के सांस अटक रहे हैं।

सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

Shakira. पापा मम्मी के लिए बेस्ट गिफ्ट सारेगामा कारवां।

0: पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6 पर। कार्यक्रम
1: रेडियो डीएस 89.6

पसंद आपकी फरमाइश और आपके पसंदीदा गीत आपकी अपनी आवाज के साथ सब कुछ मिलेगा आपके अपने रेडियो डीएस 89.6।